0: सुबह धन्यवाद। आपके ताल्लुक तो फाइटर्स की तारीख से रहा है ना?
1: जी जी,
0: इधर आप मुझे इस बारे में बताइए।
1: देखिए, ये उन दिनों की बात है, 80 और 90 के दशक की, जब ये मशहूर आइट मास्टर अजीम भाई, अजीम भाई नाम तो सुना होगा,
0: बिल्कुल
1: बहुत फेमस थे, उनके पायलट थे मेरे अंकल मंसूर अली। उस दौर के काफी चर्चित फाइटर थे और बहुत डीलर थे, और उस दौर में सब ज्यादातर घोड़सवारी वगैरह और उसके ऊपर फिल्म ज्यादा बनती थी, तो वो बहुत अच्छे राइटर थे, मतलब बहुत अच्छे घोड़सवार थे।
0: बिल्कुल,
1: और ये बहुत मुश्किल काम है
0: घोड़सवारी फिल्मों में शूटिंग करना,
1: बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके लिए मुश्किल इसलिए नहीं था कि उनकी पिछली कुछ कहानी है थोड़ा सा अगर बताना
0: जरूर।
1: वो फिल्मों में आने से पहले जू चौपाटी के ऊपर घोड़े वगैरह चलाते थे।
0: अच्छा,
1: तो सिटी साहब रोहित शेट्टी के पिता
0: जो बहुत बड़े रिलीज भी हुए,
1: हाँ वो आप फाइट मास्टर भी थे।
0: जी बिल्कुल,
1: सिटी साहब अक्सर जो है वो जू चौपाटी पे आया करते थे, तो वो देखते थे कि ये लड़कों जो है ये मतलब जब फ्री वक्त होता था तो वो जो जितने के घोड़सवार लोग थे वो तो अपने घोड़ों को दौड़ाते थे आपस में, तो ये लड़का बहुत तेज दौड़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। एक बार उन्होंने उनको बुलाया।
0: जी,
1: अब सिटी साहब तो बहुत फेमस थे भाई, क्योंकि वो एक्टर भी थे, तो मेरे अंकल को बहुत शौक था फिल्म के अंदर ये स्टंट वगैरह करने का, लेकिन कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, एंट्री नहीं थी वहाँ जाने की। तो जब सिटी साहब से मिले तो बहुत मतलब वो इमोशनल हो गए, तो सिटी साहब ने उनसे कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छे घोड़सवार हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो उन्होंने कहा सर अगर आपकी तो कृपा हो जाए तो मैं बिल्कुल ये सब करूँगा। सिटी साहब की वजह से ही इंडस्ट्री में उनकी जीत हुई, हकीकत में देखा जाए तो। उसके बाद में

अच्छे होते हैं, मतलब घोड़े वगैरह का जो सीन होता था, डाकू वगैरह की सेवा होती थी पहले, तो वही सब चलता था ना। तो उसके जो स्पेशलिस्ट मास्टर थे अजीम खान थे। अब अजीम भाई ने इनको अपना साइड रख लिया और ये स्टंट बहुत करते थे, बहुत डेंजर थे। तो मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहता हूँ। मेरे खुद की नजर के सामने का वाक्य है, मेरे अंकल के साथ मंजूर अली के साथ अक्सर शूटिंगों पर जाया आया करता था। मुझे बड़ा शौक था तो मैं जाता था। तो ये घोड़बंदर की बात है, यानी मुंबई के घोड़बंदर है। घोड़बंदर में फिल्म गंगा की सौगंध सुल्तान अहमद साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो गंगा की सौगंध का क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, चार्टर प्लेन वाला, यानी अंदर खान साहब जो है चार्टर प्लेन में रहते हैं और अमित भी जो है नीचे घोड़ा दौड़ा रहे हैं। और बहुत ही कड़वी मामला उस फिल्म में, आप देखिएगा बहुत ही कड़वी मामला है। अब उस फिल्म के साथ इतनी हिफाजत वगैरह होती नहीं थी जैसे आजकल है कि आदमी मतलब अगर कोई स्टैंड वगैरह करता है तो कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है। उस फिल्म इतना कुछ था नहीं, तो ये बिंदास करते थे अपने कॉन्फिडेंस से, अपने भरोसे से और दिलेरी से। उस बार उन्होंने इतना खतरनाक वो सीन किया। अमजद खान साहब इतना इंस्ट्रक्टिव है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी मतलब की बात है। अमजद खान साहब ने इनको गले से लगा लिया, गले से लगा के साहब इनको उस फिल्म अमजद खान साहब ने 1000 रुपया इनको इनाम दिया। देखिए सवाल पैसे का नहीं है, सवाल बख्शीश का है। उन्होंने बख्शीश दी और उन्होंने कहा कि वाकई में आप बहुत अच्छे बोल सवार हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी तारीफ की। तो वहाँ से फिर मेरा जो था मतलब रुझान और बढ़ गया। पहले तो मैं सोचता था मैं करूँ क्या, मुझे फिल्म में तो आना है लेकिन मैं एक्टिंग में आऊँ या मैं एक्शन में आऊँ या मैं किस में आऊँ, मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज था। लेकिन जब मैं जाने आने लगा हमारे अंकल के साथ, तो मैं देखता था कि जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वही फिल्म का मेन होता है। वो कट बोलता है तो कट हो जाता है, वो रिटेक बोलता है तो रिटेक हो जाता है। उसके इशारों के ऊपर, उसके उंगलियों के ऊपर और उसके बोलचाल के ऊपर अपना काम करता है, पूरा डिपार्टमेंट उसके इशारों पर नाचता है। तो मैंने बोला नहीं, ये काम चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैं वहाँ पर आकर्षित हुआ, उस तरफ मैंने अपना फोकस किया। बस ये देखने के जो है कहते हैं ना कि जो ईश्वर को अल्लाह को जो मंजिल वही होता है। एक वाक्य ऐसा हो गया जी, एक फिल्म बन रही थी ब्रिज सदाना साहब की। ब्रिज सदाना साहब काफी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं, बिल्कुल पिस्टोरिया नंबर 203 और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है उन्होंने, कमल सदाना के पिताजी। ब्रिज सदाना साहब जो है वो एक फिल्म बना रहे थे बॉम्बे 405 माइल, फिल्म का नाम था मशहूर में आगे बहुत नाम था। फिल्म अच्छी थी, अच्छी थी। विनोद खन्ना साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, अंजद खान साहब, प्राण साहब, सिन्हा सामान वगैरह ने की। तो उस फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो महाकाली, यहाँ पर मुंबई के अंदर महाकाली गुफा है, वहाँ पर उसका क्लाइमेक्स फिल्माया जा रहा था। उस टाइम मैं नहीं था वहाँ पर मौजूद, मतलब मैं हमेशा अपने अंकल के सेट पे जब मुंबई में शूटिंग होती थी तो मैं हमेशा रहता था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं, शूट हो रहा था। और कुछ लास्टिंग का सीन था, शेट्टी साहब रोहित शेट्टी के पिता साहब साइड मास्टर थे, शेट्टी साहब से कुछ टाइमिंग मिस हो गई, उनको जंप मारना था और उसके बाद शेट्टी साहब को ऑर्डर देना था कि ब्लास्ट करो और पेट्रोल ब्लास्ट था। पेट्रोल ब्लास्ट आप जानते हैं कि पेट्रोल की बहुत बड़ी थेरी वगैरह रखी जाती है, वो खतरनाक ब्लास्ट होता है, इसकी चपेट में कोई आदमी आ जाए तो टोटल लॉस बचता ही है। सर ऐसा था कि उनको जंप मारना था और यहाँ से इनको ऑर्डर देना था जी, लेकिन वो थोड़ा सा टाइमिंग मिस हो गई। ओहो हो, उन्होंने जैसे ही किया इन्होंने कोई ना ऑर्डर दे दिया शेट्टी साहब ने, फिर ठीक है आपकी चपेट में आ गए जी और 100% जल गए। वहाँ से बहुत बड़ा धक्का लगा हमको और कुछ दिनों के बाद, 2-10 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी इंडस्ट्री ने शोक प्रकट किया, लेकिन सर हमारा तो सब कुछ चला गया और ये समझ लो कि मेरा वक्त कम था गया। अब हमारे परिवार को फिनलैंड से नफरत होने लगी जी जी, सर उनसे जवान चला गया, अब मैं संघर्ष करूँ तो कैसे करूँ। लेकिन मुझे तो मतलब एक नक्शा था फिनलैंड का और मैं तो मतलब निर्देशक ही बनना चाहता था जी जी। तो मैं चोरी चोरी छुपे छुपे जो है फिनलैंड में जाना लगा, लेकिन मेरे अंकल का नाम था और मैं उनके पास जाता था तो मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी और लोग मुझे जो है इंटरेस्टिंग नज़र से देखते थे। उसके बाद में सर ऐसा हुआ कि मुझे काम मिलने लगा, काम ये मिलने लगा कि प्रोडक्शन में मैं लग गया। अब जो मुझे काम सीखना है जो मिलेगा वो करूँगा बिल्कुल। तो मैं प्रोडक्शन के अंदर लिखाई फिल्में जो है वो प्रोडक्शन में असिस्टेंट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन मैनेजर में मैंने की। हाँ एक्चुअली मेरा फिल्म दुनिया से काफ़ी पुराना संबंध है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पिता बहुत पहले मतलब तकरीबन 40 साल पहले, 50 साल पहले बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम लोगों का घोड़ों का कारोबार था तो घोड़े वगैरह भी फिल्मों में देते थे। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, मतलब बहुत बड़ी फिल्म थी अभिषेक कपूर गटू जी, तो टाइपो थे कि बाद में जो है निर्देशन किया था और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, अनुपम खेर जी थे। अच्छा देखिए सर, इसके पीछे भी एक मैं आपको छोटा सा

का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत मुझे इंडस्ट्री में काफ़ी काम मिला। पहला जी जो थे उन्होंने कहीं से पहला जी का नंबर मिला, पहला जी ने मुझे बुलाया, पहला जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आके फिल्म बना रहा हूँ गोविंदा को लेके, सीपी को लेके। पहला जी बोले नहीं नहीं भाई तू बंदा अच्छा है तो एक काम कर प्रोडक्शन में आ जाए। तो मतलब सर इससे बड़ी बात क्या है, मैं उनके साथ में प्रोडक्शन में लग गया कुछ दिन के लिए। बलराम जी प्रोडक्शन मेरी करते, मैं उनके साथ में कुछ दिन लगा। एक बड़े काम का बंदर उस गाने के अंदर जो मेरे से हो सका वो मैंने उसने किया। उसमें हादसा हो गया था सर जी, शायद वो हादसे की वजह से पहला जी के दिल में मेरे लिए कुछ जगह बन गई हो। हादसा ये हुआ था कि हम लोग जू चौपाटी के ऊपर गाना कर रहे थे बड़े काम का बंदर, उसके अंदर आपने देखा होगा पत्ती पे एक लड़की चलती है, नट नट वगैरह बोलते हैं ना, ये तमाशा करते हैं। तो गाने के अंदर ऐसा बताया है, तो वो लड़की चल रही थी और फुल गर्मी का मौसम था, तो अचानक वो लड़की थी वो बेचारी गिर गई। अब गिरी तो सर के बल सर जोश हो गए, वहाँ गोविंदा साहब थे, सीके पांडे थे, पहला जी थे और तरुण डांस मास्टर थे, सब चौंक गए एकदम। मैंने उठाया क्योंकि उसको मैं लाया था ना, मेरी जवाबदारी थी, घर से उसको थोड़ा सा पानी भी पिलाया। तो सब घबरा गए कि अब क्या होगा, क्योंकि सेट के ऊपर ऐसा हो गया है भाई। दो बातें, एक तो इंसान तकलीफ हुई है, दूसरी अगर शूटिंग नहीं होगी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, दोनों बातें हैं ना। मैं उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले गया नजदीक के, और सर मुझे सिर्फ एक आधा घंटा दीजिएगा, आधे घंटे तक आप अपना जो काम है दूसरा कुछ कर लीजिए। और मैं जाके सर फटाफट जो भी ट्रीटमेंट होता था वो करवाया, तो इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने दिया और कुछ किया, तो वो थोड़ा ठीक हो गया। भाई मेरे फिल्मी आदमी है, मुझे पता है कि अगर ये काम नहीं होगा तो मुझसे नुकसान हो जाएगा। तो उनका आगे किया वो लड़की से कि बेटा तू अभी ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। आप खाली एक शॉट, क्योंकि वो मास्टर शॉट था, अगर वो शॉट नहीं देखते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो मैंने बोला एक मास्टर शॉट है, आप अगर दे सकते हो तो इससे जो है प्रोड्यूसर का मतलब नुकसान होने से बच जाएगा, और हम लोग फिल्मी हैं, हम लोग जो है मतलब काम करने वाले हैं, टेक्नीशियन हैं, हमारा फर्ज है प्रोड्यूसर की हेल्प करना। तो उन्होंने सर वो शॉट दिया, वो शॉट ऑके हो गया। इतने खुश हुए पहला जी कि मुझे गले लगा दिया, मुझे गले लगा कि समुद्र के किनारे कांधे में हाथ रख के चले गए। पैकअप बोल दिया कबीर जी ने, और मुझे 10,000 रुपये निकाल दिया पहला जी ने, मेरे हाथ में रख दिया। बोला सर ये किस बात का, बोले प्रोड्यूसर काम किया। मैं बोला सर नहीं, ये पैसे का तो सही हकदार मैं नहीं हूँ, इस पैसे के सही हकदार वो बच्ची है, ये पैसा उसको मिलना चाहिए। बोले आप अपने हाथ से मुझे इसमें शामिल मत करो। लेकिन पहला जी को भी बड़ा कम दे दिया। मैंने फिर वो बच्ची को जाके रखो, आप अगर और कुछ ये हुआ तो पहला जी के दिल में शायद मेरे लिए कुछ जगह बन गई। अब मैं उसी मोहब्बत पे आ जाता हूँ। फिर विपिन खाना जी खुद ये मोहब्बत बना रहे थे डब्लू राव जी कैमरा मैन से, मुर्दा गवाह वगैरह बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी डब्लू राव जी ने। विपिन खाना जी की ऑफिस नहीं थी, तो उन्होंने होटल के अंदर ये ऑफिस बनाई हुई थी। मुझे वहाँ बुलाया पहला जी के जरिए, पहला जी ने उनको नंबर दिया। पहला जी ने बोला ये की बंदा है इकबाल, वो सब कुछ कर देगा और उसको बहुत शौक है, और वो लड़का ऐसा है कि मतलब आपका प्रोडक्शन भी संभाल लेगा, आपका सब कुछ कर लेगा। उन्होंने मुझे बुलाया सर, तो वहाँ डब्लू राव भी थे, डब्लू राव इतने बड़े कैमरा हैं। मैं फर्स्ट टाइम उनसे मेरी मुलाकात हुई, रूबरू हुआ मैं। तो डब्लू राव जी ने काफ़ी अच्छे इंसान है, उसमें ट्विंकल खन्ना, अभिषेक कपूर और अनुपम खेर के आर्टिस्ट थे। वो फिल्म मैंने पूरी की, कम्प्लीट की, उनके साथ में मैं जुड़ा रहा। और मेरा तो मकसद था डायरेक्टर बनने का, तो मैं तो मतलब अपना जो डायरेक्टर जो करता था, जो डायरेक्शन देता था, जो बोलता था, मैं बस उसको फॉलो करता रहता था। तो सर ऐसा मैं सीखता गया, मैंने बहुत सी फिल्में की। अंगना में बाबा द्वारे पे मा, अरे अंगना में बाबा द्वारे पे मा, कैसे आए गोरी

0: してきた。
1: गोल्डी है आपके जीवन में शास्त्रीयता बारी की आराधों की श्रृंगार शुरू का समय बीता दौर बदले छायन है संगीत की मधुर पाठशाला हर रोज सुबह और शाम 6:45 बजे तक संगीत सरिता विविध भारती पर

0: 的话，很少穿的便宜的便宜，好多颜色的干的干净，这谁家也是长毛穿的鞋，羊毛鞋、粉红穿的鞋。
1: 我听你，
0: 再讲啥？再讲这些，好

0: कोई ऐसा टीका निकालिए जिससे आप इन्हें खामोश कर दीजिए या मुझे बेहोश कर दीजिए।
1: रोटी उठी
0: जल्दी कीजिए और इनका

0: इसी तरह की बातें और हरकतें ये कई दिन से कर रही हैं। कभी मुझे कोसते हैं, कभी बच्चों पर बरसते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है डॉक्टर साहब।
1: आपके घर में आईना है? मेरा मतलब है मुँह देखने का शीशा। जो बड़े से बड़ा हो वो लाइए। शीशा इस आईने को अपने दोनों हाथों से अपने सामने पकड़िए। पकड़ लिया। इस आईने में आपको क्या दिखाई दे रहा है?
2: क्या दिखाई दे रहा है?
1: अरे आईना मेरे सामने होगा तो मैं ही दिखाई दूंगा। अरे तुम दिखाई दोगे? अब आईने देख, अपने आप को देखो और उंगली के इशारे से समझाते हुए पांच बार बोलो, मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है।
2: बोलता हूँ
1: मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है। पहले से कम है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मानसिक रोगों का डॉक्टर, और यहाँ आने के बाद मैं अच्छी तरह समझ गया कि यहाँ बीमारी का असल कारण क्या है। या भी है ना, आपका मतलब है बच्चे जो मुझे जान से मार देने पर उतारू है? जी नहीं, आपके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे बहुत मासूम, बहुत ही प्यारे। आपकी ये परेशानी कि वो आपकी जान के दुश्मन है, बहुत आपकी कल्पना है, सिर्फ आपका तफक्कुर। जी हाँ, जस्ट दैट। और इसका इलाज है अपने मन को समझाना। यानी आपको परेशान है, कुछ नहीं, और जो है वो महज कल्पना है, इमेजिनेशन। ऐसा करने से आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी हर मुसीबत खत्म हो जाएगी, और आपके बच्चों का ये शोर मधुर संगीत में बदल जाएगा।
2: ऐसा?
1: जी हाँ, मनोविज्ञान इसी का तो नाम है। आप बताइए। अभी कुछ देर पहले आपके सर में दर्द था, मैंने आपका मनोवैज्ञानिक इलाज किया। क्या अब आपको सिर दर्द है?
2: मुझे तो बिल्कुल सिर दर्द नहीं है।
1: सच तो यह है कि मैं बिल्कुल भूल ही गया हूँ कि मुझे सिर दर्द था। यही मन की साइंस है। दरअसल आदमी कल्पना कर लेता है कि उस पर मुसीबतें टूट रही हैं, और इस तरह वो खुद को परेशान कर लेता है, जबकि उसे इन पर हंस देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए।

0: वरना आपकी बिजली कट जाएगी। हाँ, आप ऐसा कीजिए कि हमारे दफ्तर में आके मीटर की कंप्लेन लिखवा दीजिए। मीटर चेक होने पर और गलत निकलने पर रिफंड मिल जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि हमारे दफ्तर के बिलिंग डिपार्टमेंट में एक दो खिड़कियां छोड़ के खिड़की नंबर 3 पे मिस कल्पना बैठ जाए। क्या कही?
1: कल्पना?
0: मिस कल्पना
1: करने पड़ा हुआ है। अरे ये तो सब मेरी कल्पना है कि मुझे बिल मिला है। वाह भाई वाह, दिस इज जस्ट माय इमेजिनेशन।
2: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं भैया, ला ला, मैं मुखा परेशान हो रहा हूँ।

मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, ये कोई परेशानी की बात है?

हो गया। आपने तो मेरी काया भी पलट दी। तो मैंने अभी अभी कल्पना की कि मैंने रुपए दान दिए, जबकि असल में ऐसी कोई बात ही नहीं, यानी आम के आम और गुटलियों के दाम। इतना हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आखिरी बात को समझ आती है।

एक खेल रही है मुझसे, एक मिनट के लिए तो मैं घबरा ही जाता हूँ जब कोई मुसीबत आती है तो, है और अब तो सबसे बड़ी मुसीबत आई है मगर मैं समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा कि जल्दी

0: आती है, पहले वो सब और अब ये 25,000 रुपए का इनाम। जवाब नहीं
1: मनोविज्ञान
0: कहीं मेरा फर्स्ट अप्रैल फोन तो नहीं बना रहा हूँ।
1: हेलो मिस्टर कस्तूरीलाल, ये सच है, आपको वाकई 25,000 रुपए का इनाम मिला है।
0: सचमुच मेरा इनाम

0: करूंगा, क्यों डॉक्टर साहब?
1: अरे क्यों क्यों?
2: और आपकी भी जरूरत नहीं रहेगी।
3: मम्मी भी सोने जा रहे, चक्कर खाकर गिर गई है, पता नहीं क्या हुआ, जल्दी चलिए।
1: डॉक्टर
3: साहब जल्दी देखिए मम्मी को क्या हुआ है। पिताजी क्या हुआ मम्मी को?
1: आप जरा वेट हो जाए, मैं देखता हूँ।
0: जिज्जा जी शायद जिज्जी खुशी से बेहोश हो गई।
1: कस्तूरी लाल
2: जी डॉक्टर साहब,
1: दिस इज अ रूटीन। आज के बच्चों की माँ फिर माँ बनने

आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सीधी भरकर कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सूत्र लोक।

पा जाते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए एक पहेली लीला इस फिल्म का गीत तुलसी कुमार आलम खां ऐश्वर्या मजुमदार और डॉक्टर मनोज की आवाज में। कुमार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है उदय चंद पाली ने।

0: सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्ट विद योर डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों का
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें

सैनिक के रूप से लिखा है कैसर और जाफरी और संगीत श्रीवास्तव ने। संगीत प्रीतम का बोल पापोन के फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों।

0: मैंने सुना कि बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने

0: थी पुलिस से कम करनी सबकी तेल के आयात पर निर्भरता घटानी और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिली।
1: के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको आत्मनिर्भर

0: दिया था और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिनसे, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म

0: औरंगाबाद का इसका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने मुकाबले के लिए अपने 122 सदस्यों की टीम उतारी है। पन्ना खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एम आर अर्जुन और हरिहरन

पूरे भारतीय जन सेवा परिषद ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव तरुण सिंह और रजनी अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए गए।

कॉन्फिगर देयर है। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुनैना पंडित सिंह, जिसे गाया है यशुदास ने। गीत और संगीत रविंद्र चौरे का।

0: सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम होंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम से नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 5 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत आवाज़ें लता मंगेशकर और

का जन्म शुभ न समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने सैनिक और निर्देशक थे, तो माता शुभ न कंवर अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शुभ न कंवर और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला संस्कृति के संस्कार धरोहर ही न मिले थे, लिहाजा उनकी माता जी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी की उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला

वास्तव में गंभीर अभिनय थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भाव भंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों पर संपन्न उनके भान पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा नर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित

उसका बेस्ट क्लिप अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभिषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय के सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान पहुंची। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

有比你更认识的一个人，你的知识是怎么会丰富？大家在那边骂的在地里，总是在这边有矛盾，总是跟那边多提矛盾。但我们所做的这边也是没有注意的。人们在那里思考的事情，本来很好奇的那个，所以叫马龙的家。और उसकी पेशीजीय को दर्शाने का मार्मिक चित्रण का एक फिल्म है, जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने सरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया।

1969 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार

कॉमेडी फिल्म थी अनाई, जो आई थी सन 1959। इस फिल्म में नूतन के हीरो

साहब के साथ हेरोइन पर रोल निभाया था। उनके निर्देशक थे मनमोहन देसाई।

1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों बिना इंसाफ के साथ

जीवन में नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छवि भी। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माता जी शोभना समर्थ ने।

दशक में उनकी कई फिल्में आई। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म सुशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का शव हो, 1958 की फिल्म आखिरी दाव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म फरिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म

एम्पायर के चौथे 10 एक्टिव अवार्ड का सवाल है वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज हुई थी 1954 में। प्रसाद प्रोडक्शन के नाम से लेके फिल्म बनी थी।

कस्टमर ये फिल्म मैं उनकी तरह आया इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस तरह उनकी उम्र की 42 साल।

नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई थी, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो है 1986 में आई

अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी से जौहर दिखाई। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई। दोस्तों उनकी बेटी मोहनीष बहल एक सफल अभिनेता है। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही है तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा है। दोस्तों भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सिंह समर्थ की ये छवीली बेटी अपने बेटे मोहनीष बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंप कर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1993 में हम लोग की दुनिया छोड़ पर लोग चढ़ा गए।

था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध आलेख और पर अशोक सोनावने का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: लोगों को दावे नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीबी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में
1: साहब बीबी और गुलाम सिंह की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीब बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
0: अनमोल यादें आपको मिलेंगी

जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई है। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है। शायद यही तो प्यार है जो किसी एक इंसान में

मैं इस बात से लगता है जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजा कर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है।

मुश्किलों की धूप हो या मुश्किलों की छाव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा। समय चाहे जैसा भी हो, साथ

चाहे जितनी देर भी कर लो, चाहे हर बार में हमें दर्द भी क्यों न मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुर्म तुम्हारे होंगे

कहोगे तुम, देखो मैं हार गई हूँ, अपने सारे गिले अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रखती है, चलो मान भी जाओ। तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है, आओ फिर से वैसे ही बातें करें जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

कुछ होती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद सब भूल बैठे।